0: हाय बेबी।
1: एयरपोर्ट मत आओ, मैं नहीं आ रहा।
0: नहीं आ रही मतलब?
1: मींस आई एम नॉट कमिंग बैक, आई कांट।
0: बट आई लव यू।
1: जितना प्यार तुम मुझसे करती हो मैं उससे करता हूं।

0: Ali to chan li rahe tha.
1: Ye kya hua?
2: What happened?
3: Power chala gaya hua.
0: Ab kya karenge? Exactly at 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं. बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया. पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया.

0: बारिशों में छुप के जितना रोया हूं मैं, तुमको भी उतना कभी रोना पड़ेगा। सिर्फ मेरा टूटना काफी नहीं है, तुमको भी तो मुंतशिर होना पड़ेगा।
1: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-2470 मोबाइल नम्बर 98465-56238।
2: चोइस एफएम 90.4 मेगाहर्ज।